फुंकाहा मार्केचिंग ताकु बखुक एफएम उच्चिंदनी फुंकसंगनी पांदवन रक जतनो लामसगो 101.6 एबा सारासा पॉइंट दक मेगाहर्ज जनरक पांद खनाय दंबाय नरक पाइ तंगा तापोस र रिकिचिंग रंगनी ताकु मार्केचिंग ताकु बखुक जोंतिनी सालकामा पांदाव तो कक सालायनै न फियाबा अमनि सगां लब मंगसा फंखनालायनाय लब मंगरसा फंखना मानि सगां नरक न तिनिनि टॉपिक तिनिनि कग्या फंकिसा सावेक लांगान मुसंगो तिनिनि टॉपिक खा लबै रिंगमानि मुं नियाखेबा हामजाके रिंगमानि मुं मारकिजिं ताखौ बखौ तिनि लांमाव जोंनो लबै हामजाके रिंगमानि गोबां

मुंगतोंगुना फियाबा अब हामजाकने रक्सिमी रिंगु हाय दिबा अब रांगजाक हेनी रिंगजाक रिंगु बाक्सा कुफुती नायथोकती जान दाल बिदाल मुंगरिंगलायो ओ मुंगरिंगलाय मानि फारलाय मानि तामने बागि फारजाका कक कथमा उक्लगो दङ आरो नाखरा यार हामजाक पुं हुजागि दङ फालिसिंतिनि सागबायथां बसा बुतै रक्न बसु रक्न रिंमानि हिक साइरक आदर ख्लायलाय हामजाक लायै लबै रिंलायमानि ओ रिंलायमानि मुं रक सिंतिनि साब बाहायखि मुं रिंलाय तांगै रिंखा आबुन उक्लगो ताम कक दं अब्रक सिंखिं सिनि जों दिनै सालायनाय नरक कल ख्लायनाय तापगि 2322625 2392253 2322625 3 ओ नम्बर फियाबा फारि ताबुक जों खानालायनाय लब मुंग्रेजाब मुं जोंनो लब मुंग्रेजाब मुंग्रेजाबै खानालायनाय ननि गोपाल देव बर्मा

डाक्टर बिसिरनाय फियाबा जतनि सिलाय काहामुंखा जतनि सिलाय काहामग्रोंखाय तंनाय लामांखा निनि जामुंनो नों अजनखाय जे डाक्टरक सामातै माचानाय तामोचायमान तामोचायमानि आबो डाक्टरनो सानाय ते कैसे हिंकाय कलम तैखिखलाय खेला दुला खलाय एक्सारसाइज खलाय मा तंनाय आसे जरा खानाबायखा आई बी एस बेमानतै ककथाइजा थाइनाय।

0: नाय आबो हंके बसकांग आगोस्तालनि सालमारी सानिसिमि आगोस्तालनि सालमारी थामजि 2026 जरा फ्लाइजाखनायहै साजाखा
1: अशोक जरा तो संखना लाइया कक तुम दो फायदे है के शिवगो बरक तलांग माने कक रो किशा नाय नाय लेन द अनि यागो तंगो अंगनवाड़ी सेंटर नि किचा बुक चाचुक थेरक सुपुंग जाक नाय अबंका अंगनवाड़ी वर्कर ते अंगनवाड़ी हेल्पर रोकने बागे अब सजाखा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ओमपी आईसीडीएस प्रोजेक्ट निबखाकते अजा किसा वाक इन इंटरव्यू नि बिशंग ती तलांग जाक नाय इंटरव्यू नहाना नि साल छाकला रजाखा ओ मेताले साल नैची चा नैची चुकु ओ मेताले साल नैची चार रो फुंगनी दामची तामै सति थामची ओ तलांग जाक नाय अब रोकंखा ती चकमा विलेज काउंसिल आरो तंगो हरिपुर मध्यपारा एडब्ल्यूसी आरो तंगो अंगनवाड़ी वर्कर तलांग जाने खरक्षा ते ती चकमा वीसी काशी चंद्रपारा एडब्ल्यूसी आरो तंग तलांग जाने अंगनवाड़ी हेल्पर खरक्षा ते मेलची वीसी ती छेन कलईपारा एडब्ल्यूसी आजागा तलांग जाने अंगनवाड़ी हेल्पर खरक्षा ते चेचुआ वीसी चेचुआ IJS कलोनी AWC अरतलांग जांनाय अंगनवाड़ी हेल्पर खरक्षा कयमंगलाय रना मुचुंगनायर बरो ओमपी ICDS प्रोजेक्ट नि अंडारो CDPU ऑफिसो थांगैनाय बरो आरो मालाय मानहनि साजाखा तैतलांग जांगनाय दङ ड्राइभार त्रिपुरा हास्तेव बाची आचुक थाय सुफुंजाखनाय अब तलांग जांगनाय तिनिनि सालो बिसि नै चिनिसिमि ब्रै चिनि बिसिङ खाजाक बसंरंनि बागै हेंके रायदान रक्षाहैन उमर फलग्र जागोन होनै साजाखा बरक आ थायो थाङैनाय साक साकनि नांमानि सार्टिफिकेट दक्तलाङै थाङैन इंटरव्यू रि मानने साजाखा रंगमारी सानजाखा क्लास 8 पास ते ड्राइविंग लाइसेंस गनां अंगनानि नांनाय
0: फादिताबो खनालायनो नबार तिबनि कक नबार तिबनि सिकां बरानि कक तमना रगै सायमंखा बसकां दाम नैसि ब्रय कखाय तिनि फुंनि दाम बातामै सति थामजि निसिमि खना फुंनि दाम बातामै सति थामजि जरनि कक नख सुमै कबल जाक तंगनाय कखाय नखा मगै तंगनाय नखा हामग्ला गासे तुंमारी तंगानो तुंसामारी 34 डिग्री सेल्सियस ते तुंख्लाइमारी 24 डिग्री सेल्सियस नि गाना गिनिव अ नखा मगै तंगनाय हिन सामने फियाबा बाक्सा बाक्सा आमजायसे तंगनाय मियानि तुंमारी सुमा नि अनुक जाखा 33.4 डिग्री सेल्सियस तुंसामारी तुंख्लाइमारी हिंगै 24.9 डिग्री सेल्सियस नबर सिबुक सामारी सिबुख्लाइमारी तंगानो 96% ते 50% नि गाना गिनिव थांनाय दाम निसिब्रे वाते गिजाफानो वालिया ते कैसा साजाक्का बाक्सा बाक्सा आमचायो उनकुटी धलाय खुवाय ते सालथां त्रिपुरानि बखाक्सतेनि बाक्सा बाक्सा आमचायो वाते किसामिसा निसिमे गोबां वायसाबायन दामसाव नबार ब्रिज निसिमे ब्रिज बासि बाजरा किलोमिटार नबार दौवै नबार फाय फेरांगुगै वाते फानो वावै मानो आसे जरा खाना बेखा नबर तैबनि कक फारिसिं दाबो खनालायनाय रिसाब पुं
1: खनालायनाय तिनि चिर कुमार देवबर्मानि खरांगु
0: तिनि पान्द्र कम थिंका आं तापस
1: ते आं मनिका फायदे हैके दाबो खनालायनो चिर कुमार देवबर्मानि खरांगु रिसाब मुं तांसा

हेलो हेलो तांगी खोरांग फायंग तोखा साइमन लिया मारे किचिंग ताखो बुखो हेलो हेलो ते वैसे खाई पी दी दो हेलो हेलो खरां पा फायंगी दं नरनी कल फाइ दं आं नुगै दङ फियाबो टिसाफानो खरां जोबा फायंगी दं फैगा बरबो खिसासे देराय दंखोना हेलो हेलो खरां पा फायंगी दंखा मारखिजों ताखौ बखौ दिनैनि टपिक ओंखा लबै रिंमानि मुं इनिखायबा हामजागै फारमानि मुं अ मुंगो आरो नाखरा आरो हामजाक मुं साबलजाक दङ आरो कक कथम आरो हुजागै दङ आरो मैथु गोबांमा दङ साबलजाख्रायै हुजागै आरो तंथकमाबो दङ हुजागै हेलो हेलो हेलो तामुं खासिलिया मारकिजों ताखौबो खुब फादिया कन जों अ फुन तामुं खा नायते नायते रिसाब मुं तांसा खोनालाय नों उषा देव बर्मा दिदा दिदा हिनै रिसाब मानि रिसाब मुं गौतम बाइख्लाय रिसाब लाइमानि बर' हिक्साय फियाबा सिख्लाफोर रिसाब लाइमानि रिसाब मुं अबाव गायसे रिंगि रिसाब मानि नों रिंमानि खोनाथक मानि बुमुं निनि आनि खाखो जांग्रि मानि अ रिसाब मुंनो खोनालायन बागै नरकनो आं जायतखार दुरदुगै तनि मानि फियाबा रिसाब मुं तामि मानलिया दिदा दिदा आनो नासिं दिया रिसाब मुंनो खिसा खोनालायन फायदि

हेलो हेलो हेलो मारो किचन ताको चीनी फोन हामियांगी तो हंदर उन्हें कॉल या सागे मान जांगी तो खा चाय तो दे हाई पनो उंगी फन थांग मनो नरक चाय तो गई तो

0: င်လိုက်တော့ငါမသိဘူးတော့ကိုင်ဇက်လိုက်နေပြီလေဟဲ့ဒီပါမိုဘိုင်းလိုဆေးပ်ခလိုက်ဇက်အာရင်းမနီဘုံမုံဟမ်ဇက်ရင်းမနီမုံဘူယဘူစီနီယန်ခါဖီယာဟနီဟမ်ဇက်မနီမုံနောဘောအန်ဆေးပ်ခလိုက်မန်ခါဟယ်လို
1: ဟယ်လိုဖုန်ကဟမ်မို
0: င်ဘိုင်အွန်လိုကီဖုန်ကဟမ်นึงเลยเบลเคโลวิกเรื่องนั้นนี่เรื่องน่ะกูมุ่งตัวกรีค่ะ
1: น้องทำไมถ้าจริงก็แค่ครั้งขนาดอะไรอะไรอะต้องอะไรกันด้วย
0: เบลเคพัลค่ะฮะมอมือบอลเดรจ์มอมือฟอนคิดเสร็จเดรจ์เดรจ์ทั้งหมด
1: ทีนี้ตลอดมึงบุษบุตรยบุมาบุษนอตามนี่ก็บุมาบุษบุษนตามนี่รอบอวบตินชาไลเปล
0: ่าจอตุนิสไลชาไลตรงมั้งไงอาบุตรชาไลเนาะสักนี่ลอกิสงนตามเห็นจึงรอบไลริงไลอามุตีบุษชาไลอยู่ตาकुमुई तो करी खान छैमानो
1: ए
0: हाइपानो कुमुई ता महिंदिंग आ मुई तो खलाई कुमुई न तिनी किसा मुई तो खलाई न कथांग हाइकैनी मकल बस खंग तुरी ता तिनी कुमुई न बन्दन ता महिंदिंग लांग नंग बन्दन ता महिंदिंग ब कथांग तंगफ्रो आबो किसे खनालाय न ता महिन हेलो हेलो हेलो बियांग कमाई थांग छकव मारे किसी ने ताकू को कॉल खाई दी इतनों ने कॉल लांग नासिंग तोंगो खोंग से खाने इन्था काबो से हेलो हेलो हेलो कमाई थांग से कुआ मारे किसी ने ताकू बुखो चीने और रिंग मनी वो आरो हमजक मुंग सापुल जक तोंगो हिक साई रिंग लाई माओ बा हमजक मुंग सापुल जक तोंगो कोबोर कुआई बाक्सा बा मलांग रोहिन सिदिन दिनलाय रिंगनाय तंग बसायन बाक्सबा मलांग जक बहिन बिहिक न रिंगनाय तंग मलांग हिने रिंगफन आबो तो मलांग के तो किजे कबर हायरे न ले छाना थांगा काय मलांग मलांग तंग के तो आबो तो आस सय सय बर गया फियाबा मलांग हिन रिंग जक फन आ बसाय हिन जक नायबो तोसे तंग थक जागो खाकसांग मासे मानो तंग थक मासे मानो आबो बाय खासे गेलाव बिहिक नि खरांग ओ मलांग हिने तो मंग रिंग मा खाना काय काय ब मासि मा तंग थक जाक नाय आपनो न भालोबासार डाक नाम हेलो गमाय थांग जको आ मारे किचिंग ताक बुक नाकर दे नरक बाय कक सना मुसुंगो नर न खरांग खाना मुसुंगो हिने जे नरक रिंग लाय मानि कक मुंग खाना ना हिने जे कथम खाना ना हिने जे नर न कक खाना ना हिने जे फाय मानि फियाबा फोन से हम यहाँ उंगे थाऊ मारे किसी ने ताको बुखो चंग खाना लेकर रंगसा किने रंगो बाक्सा रूफा हिने रंगो बाक्सा चीने बुखो वाकी तीने बुमा हंगा बुसाइनो कबर हिने रंगफो ताबक तो कथांग तो तंग करी खाना कबर हिने रंगफनो आ बुखो वाकी तीने बुफा बास के हमजा किनो आवो बाइनो तो तंग थक जाक मनी कुल पाया बिहिक बिनि लगी सङ दङैथि कबर हिनि रिंगमानि खाना काहिंकाय बसाय तंथकमानि कुल पाइजा गया मारे किसिं ताखु बुखु आबोन हामजाक पुं आरो नाख्राय नि मतम बाहाय फुलजाक दङ आरो हामजाकमानि तेलिलक बाहाय फुलजाक दङ साफुलजाक दङ बनि बागै लगी सङनो कबर फानै हिनि रिंदि कुवाय फानै हिनि रिंदि मलांग फानो हिंदिंदि बाक्सकबा आधा रखिनि सिरिं सिरिं रिंलायो सक्सुगिया रखिनि रगो हाइफानो आबो भाइ खा छाया आबो भाइ खा नांगिया आबो भाइ खाव जलिमा फाइया तसे तं थगु दे बसि हेलो हेलो खानालिया खरां केबनि फानो नरक आनि खरां जिमि खनाय मा तंसै मारे किसी ने ताको बखो चिंग तीनी कॉक चलाई तुम्हारे मने तीनी टॉपिक इनका लॉबोई रिंग मनी मोंग निक नेम पेट नेम हिनो चिंग का बोल इंग्लिश में हिंगाए तीनी जो तो ना ऑफिशियल बो मुंग तोंगो तीनी सर्टिफिकेट है सीमेंट बो मुंग तोंगो अब उनका ऑफिशियल बो मोंग पिया बा उस सर्टिफिकेट है सीमेंट मोंग अब उन्हों रिंगजाक फुरु चीन बखाव मा तंगमानी फिलिंग आबो जुदा फियाबा फारै ते कैसा मुंग निकनेम पेट नेम जे फार

मनी अब बाई मुखो रिंगजा खाई तंगथक मनी तेसा जुदा बाक्सा रविन्द्र के रवि रखें रिंग लाइ बाक्सा खाक्सांग मा खाक्सांगी फानी के अब चांगती फानी हिनी रिंग लाइ अब खाक्सांग रखन हिनी रिंग लाइ आम तो खिलाई रवि रिंग लाइ सही सही मूंग कसा खिलाई सासुई बलबी रिंग दू फिबा सही सही मूंग बाई सलैखा जुदा आखाई कर्मती कर्म यालक यालकती कुफुती कुफु दाल विदाल खे रिंग कुबुई कुबुती नाइथक नाइथकती खासुक खासुकती तबुक हिंदी सिनेमा नाई जान आनी खरकसा किचिंग दंग बरखाई बरना रिंग खनामा हंकाय जान बाई जानवर तम हिंदी रिंग बसक हमजाकना बसक हमजाकमा दंखा मूंगफारीमान ना पुला पुला बरकनो जान जानवर खिमना खनाफोर आंखे सिख्लाफोर कायजे गेसानी लासै लासै फियाबा बरक लासैना बसिया गिरिना बसिया तम हिमाले हमजाक मूंगनो केबो मेसेन माया हमजाक मूंगनो वा नामाबो मेसेन माया हमजाक मूंगनो सिक्रिमाबो मेसेन माया हमजाक मूंगनो लाची मूंगो मेसनी माया हमजाक मूंग हमजाक मूंगनो हमजाक मूंग बाई ओ हासाकानी बेबाक माचेनो हिंगे ओ हमजाक मूंग सापुलजाक मूंग से फारो हिंगे बा आ मूंग बाई रिंजाक मानी हिंगे बा रिंजाखै खाकसांग सिनाय नता रिंजाखै तंथक सिनाय नता रिंजाखै हिंगे बा खा गेले सिनाय नता हाय दिबा हेलो हेलो हेलो मार्केटिंग ताकु बुखु नर बय कक सानानि फैमानि फियाबा आंखे वा सवा नासि ओ ताम कक सायो इतिनि साता पोचि जरा पारिसिनाय आकों न कक वाय बसिले सासिनायबा मार्केटिंग ताकु बुखु हेलो ननि खरां खनानानि सेप सानाम रिमालि आं नाकारदि नरनि कक दुख फाय दङ आं नुक दङ फियाबा रम खाइंगे खनाया तीन हजार किसा टेक्निकल प्रब्लेम थका बनी बागिन खाई मान्य दखा मारे किसी ताकु बखु रेसा बुना तंगसा खाना लाइन खाइंगे अब कक नाल दंगलाइन आं सैजूंग सैजूंग कक सामंग सामंग दे बुसले सासिनायबा बाक्सा बाक्सा बिघ्न कक वानजी बैता वानजी रखे मिस्ती गई हमजागे रिंगमानी बसकै तई जागो बिघ्न मिस्ती सिन फारो बुमखा फियाबा जुदा रचना फानंखा बिनि मूंग ममता फानंखना फियाबा रिंगमानी के मिस्ती मिस्ती हिनि रिंगो रसगुल्लाहाय गई कथक तरा तंगनाबा गरै आसुक्न तुबुतियो आसुक्न थगो थगो इनके अबनी बागे रसगुल्ला हाई बन बुमूंग अमाय कतई हिनी फारो बाक्सा चंग तमंग चामंग नगुब बुमूंग फालायो फियाबा बाक्सा बेलाय थुक्रा खे कुम्भ कर्ण रखें फालायो आमतिर खे फालाया ना कबई न फालाय बिले आमतिर गुनगु हेलो नरनि खरां फायाबा नरकनि फोन फाय दंमाल आं नुगै दं फ्लिक फ्लिक जों दं हंगेबा जोंबाग जोंबाग आउन बगे तिसाय मानाय आसम आसमबो खा दङै माया फियाबा नरनि खरां खानानै सेब मालिया मारे किसिं ताखौ बखौ मुंसा ख्लायना गोरैखा रोसाब मुं खोनाय दा पायलायसिनायखा आंबो जङै माइयाङै दंखा फालि रोसा मुं दा सोखाना लायानो मनोदेवी रेसाब मोन रेसाब मुं नंखाना बा

0: जों काम के तो डेवलप खाजन थे तेने जों रेडियो रेडियो सेंटर कैसे बेलेखे कैसे कंट्रीब्यूशन बा जों तम हमें चीन कक बर बहे जो रेखा जो रेडियो तम सरिया तम जो जेमन नि हुकुमुकुमुकुसु काने तमू सामू टंखर सामना थेने चीनी नाटक तु नाटक विशंगी रोग जो मांगा रुचामू विशंगीब गोबां मानी आगे परिवेश दो जो मांगा हे नि एकदिके शिक्षा मूलक अनुष्ठान मानो नि हुकबार सम्बन्धे जो आईडिया मानो थाने टनानी साखाम टनानी सेबसाब्रक मानो रेडियो कैसे अब बेलैखे नांगू मानी सामू चीनी सोसाइटी बा चीनी जे समाज जन बेलैखे बी अबदान कक कन्ट्रीब्यूशन कक सब सबाइए
1: आव सारन बेलैन हमें किसी से जराव नि असुग मरकक जो सैखनारीमान बगे पाठक नाथों के लुकुरंग तमुकक गसा नामुसूंग सर
0: आव हाइके लुकुरंग थेने आनी कक अबन टंगनाय कैसे कक गसार मु सों होयतो बा सों ताबुक डेवलप खा बा आगिनि बाय पतले नाखे तो बेलैखेन सों ताबुक कुसुग काखा जे समय लेखा पढ़ा करी चुन कामी रोग चुन फेरान करी कामी रोग लामा कोंमा करी अजरा रोग तमुंग बाई तो ताबु कबंग मन फेरी थांका फेर मुंगो थांग हमपानो चुन हाइपानो आकाशवाणी रेडियो नि बिसिंग तई चुन ताबु कबंग मा मानै मानु सिनिन सिताय तंगो साइमाननानि तंगो कबंग मा साइमे जिनिस मानै मानु आबनि बागै चुन रेडियो रेडियो न ताबु फानो खनानानि बेलायनो नांगौगो हंकाय रेडियो बिसिंग तई जो अल इंडिया रेडियो बिसिंग तई गोबां मानै साइमाया मानै मानो इनफरमेशन मानै मानो विभिन्न निनि रों सोरोंनानै थेके आरम्भ खायै थाङै दंनानै थेके जेंगै गोबां सामग्रक जों मानै मानो आबुनि बागै जतन न रेडियो ताबुकबो याकार याकारै जों खोनाका हांखे बेलायनो जानाय जों जे चीनि ससाइटिव जों टाइप एवारनेस माननानै बागै आं जतन थेने कहनाय जतन रेडियो रग जुदि कमसे कम जेफ्रु जरा मान आफ्रु रग खोनालायके बेलायनो जानाय
1: आव बेलायनो हामबाय सारन तै जत खोनाय टंनाय रंनाव बेलायनो हामबाय जों अबा हिखे तैबो सैगोरों रेसाब गोरों वानसुक गोरों रंनि वानसुक मुं थुमैतो उना सायटकनाय सारन हायनाहाय बेलायनो हामबाय खुलुमका
0: आव खुलुमका
2: आसु जते खोनाबायखा रेडियो अल इंडिया रेडियो हाइकबा आकाशवाणी फिल चुकुसि बिसि खनमा सालनो रोखिनै सैखरों रंगनि बर'नि खाकामु सन्दार रामदेव ब्रह्मा सैखरों बर'नि ककनु बन कक थमैतुखा राकेश देव ब्रह्मा ताबफादि तावसुझर निउज हेडलाइन्स तामतंनायलै मन्त्रिबख्र नरेन्द्र मोदी बिसकां फार्स्ट हल सालदकनि बागै हाक्टर कायबा बेरायना थांनो राष्ट्रबख्र याक्सु सिपि राधाकृष्णन चाका अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स हाक्टरनि साखनाय मुंनि सेबसाब चुकसाजा केन्द्रनि स्वास्थ्य मन्त्री अमित शाह साका नरेन्द्र मोदी हाफां साइबार सिकिउरिटि भारत कैसा सनामी तीसना बगे सामूतांग दंग एन रंगा सामीटी पुडुचेरी मंत्री अक्रांग सुमायतांगान लोकभवन मचांग रंगा सामीन सुमायतांग्रोना हास्टेपयाचू के कैलाश नाथन डाक्टर परिना नीट अमजमू कारी रजाखा सूमुबुलाय श्रीकांगारी कारी जगमा कक सिलचाई नो अकक सबजाखा मंत्रीखरा डाक्टर हिमंत विश्वशर्मा मिया आसामनि मन्त्री अक्राङै समायतांखा कैलासहरनि रामकृष्ण कलेज मियानि सिमि चेंखा सालनिनि बसुं बेरमनि ककलाम्पान्धा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएसन बाय नाइकलजा तपन मुकुमो अरनि नकआउट क्रिकेट बाटेमङ मिया प्लाटमाउथ क्लाब ताइ जयनगर क्रिकेट क्लाब सेमिफाइनालाव कासाका छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द मुकुमु उमर बिसि नैचि जरानि फुटबलनि बसुं बेरमनि बाताइमङ मिया त्रिपुरा बदल पुइला थमङ्गन कप्लायिंखा हास्ते बदल गोलकाइथमनि फेयर बा हिमाचल प्रदेशनो मेचनखा बसखां दाम नैचि ब्रियो नखा किसा मुनाकजाक तंगानो तिनि सालनि तुमारि इसाखाव थामचि ब्रै डिग्री सेल्सियास ताइ खामाव नैचि ब्रै डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगानो आसुजन

0: सरी थियो
1: आबु सिमिया बंगनी जायगा बेरेज बुसाब आ आमालाय फांनैया फंग बखरक बुफायमां बुफायमां आरो नहाय थैलाला लिं केहाय बतकला जाक
0: देगा बेरेज खाय थुदा थुखाना साता दंगय
1: थैका आ आमालाय फांसाव न बुफां बसलंनि बेरेज देखसोके गनति कटक सरी थिजा ललालाय तैया फंग खबा देगा बेरेज बुसा कटमा कटसा गथुय हाय पगलुलुम कला जाक आबुन काशेंगै तं खता उमा उमा
0: आता दंगय ता मगनायति बा सुंबाय चंजागमा बागै दे बेलाय खेला थिजागै थिखाना हिनो
1: आबबो खिबजांनाय कग्या नङै फानो मानो हायफनो ककले कबुनि बोले जों त हानि बनो सुनामै छाया
2: आकन्ता अबंनि देगा बिरास खाय आसाय दरबनि सिमिनो बबे कागै दे तं हुनु जोंबा हायबे हायबे से गुबै चेंग्रा माइखे चेंग्रा थोंलाय बेला सा
0: हायनि बागैनो बंनि आबबा आन्ति थांलाय मानि न गलाय खाता आता दंगय नोंदा पैला नुगै फायग्रा
1: हानि बागैनो आंनो सोगां नुगै फायो
2: नोंखायाबो बाहायखै दाय बियां थांदानि नुगै दंसा
1: याखंनि वारुवा गिसा तानानि थांमानि सय सय थैबाय दरब सेरंबाय खाना आमालाय फां पपाक जांमानि थासे थागियाखौ आमालाय फां तामासो पपाक जागै दंखासा होनै नानिया थांमालाय महाय नुगै दंयो
0: हिंखाय आता दंगय नोंगो नायदिनि बुमा बुफा संनायखे सादो साबुखासा
1: पैला बंनि नगो थाङैन सावैमा काबुखाता
2: बुमा बुफा संले बिप्राय दंलाय खाना
1: आरो तै साजांनाय कक दंसि आं सामानि लगे लगेनो गनायदिनि बुमाबा आयं बुरै खासि गै हानि जिरो खगै ककथै खलै काबै थांखाबलासा आंनो बो गामिनि बरावनो बो सावैमा रहबाय खाता
0: मुसुक फाले मिसिक फाले सुमाय तांजा खेबले आब' नांया थांया
2: हानो ता यां मासिंनियाबा बरक आयं मासिंगो बुखुबनि ओंनाय सिनायता आता हिमनि आता दंगय जोंबो यागनि हरदेंसा रैलायनो ता ताम हिन सिबिंदि
0: आब'नो ता हामफानो हामियाफानो चिनिबो साखचालायं जाखाबोला हिमबायदि थांलायनानै खायबा हरियाफानो गोथैसिमि फानो नायरोगै फायलायसियानो
1: सिबिंदि सामानि आब'नो सय हरिना बागले अख्रारक सोंनो बोलोंगो तलांगला हिमबायदि गोथैखे गोथैसिमि फानो नायरोग फायलायानो फायबायदि कतक सरी थैमानिबोला बिसिले दोगै दंगला दाथिं मोतलांनो खायलायानो
2: हिमदि फायदिखे सिबिंदि
0: हिमदि माइतांदि सोकां हिमदि
3: सिपाय अखरा दामु दागे जारी बुबग्रा
4: दागि नाया आनि कक्स खनाग्रा दे
3: दो साजारी बुबग्रा खनावानो
4: कक खाय कक साना नायमा खाय जों मोसैमानै फायमानि कक्नो साना नायमानै
3: दहा कन साजारी बुबग्रा
4: मोसै खाय अतर माताय कुबु कुफुं हाइले खम खमखायनो मानै फायलायग्रा खाना
3: बुबग्रा नाकार जादि निनि याग आसुदा सय निनि मुसि कङनो नुगुइ बेलायखनो वानाग्रा खांले
4: आबो हायनो थेन बाय जरा बाय वाय सौसु हायनों ता हायफानो बलंनि मुइ कङना जरथि खाय आनि या किच्छाफानो कल कलैया आबोले सन्य दङ हाय ए मा कुसा मायसा बाथ्र ग्रेडि
3: आमं खाबोग्रा
4: सिबायक्रा नाहारि नायला आ आमलाय थाङो आबो ता मुब्लायलाय साफानो करि खाय बेबागै हाय बेदेक देख साव बुथाय थानि सुसुरुखाय थाय दंमा खालाय खाब
3: आ गुबैया खे तामस बुबग्रा
4: आमो बेलायखेवान मा सिंग्रा नंमा खालाय खा थांनि खरग सिपाहिनो दाय गुइ खागै नाहार ग्रा दै
3: आ बुबग्रा ऐ सिपाय थांनि खरगसा थांदो आमलाय फाङो कासावै आरो ना थायनि सुसुरुक बुथाय तामना खागै नाहार फायग्राला
5: आ हुजुर आं कासावै खागै नाहार फायनो
4: सिपायक्रा जों बाय आमलाय फां तलावनो थाङै दङै मालायब्ला सा
3: आ मानता बुबग्रा आयं तिनो सिगादरब बासुइ मानलायखा ता थ मा कुसा हिन्दी तैदि आयं ति आमलाय फां तला तैनो सिगादरब थांलाय मा जाउ चिनो तुम तुम फाजि दो आयं तिनो सिगादरब बासलाय मान खाता
4: ए सिपाय नाय कासा दे खलायने
3: आ आमलाय बेदेखले बेलायखे नरम नाय कासा दि दो
5: बा थायनि सुसुरु फानो बेलायखे कटो कटो नबि ए महाका आम सेकले ओकपाब
3: तामु खासा
5: हुजुर हामलाय सुगलिया थायनि बजारामनो खागि पाइमाले थायसेगे या केपले हाउस गलाय थाका
4: साय मांखा मांखा निनि केपला जा गामलाय बथायनि हाव गलाय मानि लग लगिन आनि मायुं आबनो फाट जाखौ बुसिनदि बे खेबै खसाय खेबका आबो बिनि बान्थानो बागजागोन खाता
3: दंखा जे मान मानि आबनो सिमिफानो तुइ फाजिदि दो आबो जानि जा बागजाग दंमानि हायनो ओंखानाबले बुबग्रा
5: हुजुर ना कारसा सिदियानो या केपलामानि सास्लाबैसो मालिया हिन्दी हुजुर थासानो

0: खुलुमका जोर
1: दंका थांसी बबगरा आंग बवासाय फेमेनी आ सगंका महाय आमलाय बथाय कतरता हिलिंग नुयाखौ हिनिखे बबगरा यासाकजा
2: दुबदि बा कुबुया खायबा तामसा आमलाय बथाय जा आसो कतरता हिलिक हायनि बागिनो आनि मायंग नुगुई दंगुई मानजाग्लिया ता ककरै बबो केबुयाब्ला आनि मायंग नुब्ला थ माग तुसा हिमसिदे दाय बुसो मसिबो मासा मांखा दाय आनि इसिरिनि बागैबो आमलाय हिलिक थायसाबो मामुखा आसोग भाइनो आनि इसिरि दंथगै कुरपाजे गेङै दङानो हायनुं नामले सिबायग्रा
1: आव बबाग्रा हायनु हायफनो चिनि बबाग्रा जब्बो बखा काहाम नब्ले
2: बखा खायथ' बेलायनोसो काहामनो तमा खायबा मुंसानो तुइनाय बखा साजा गेङमा दंका सिबायग्रा
1: तामुनो तुइले बखा साजा गेङना दंमा बबाग्रा
2: दायतामसा दाबुक जरा बुसाबतै अंगियानि बागै दायतम
1: बबग्रा अबबा तामसा कायत्रुसा जे सही रहरमानि आरो केबुनि याक्रै
2: बेबां सैन्य दंगौ हाइफानो जरा जराव बखा मिथिक जाता बन कारिले आनिब जरा जराव खाय हायंता हाय कक सालाय ते सालाय ते बुफुरब सकबायसेर फायलायखेब्ला सा
1: आ कुबैयाखे तामसा ए सिपाइर ओ मुसैताय मानैरं न जाय जायखे गारिउै जानि थायो तुनिदि बायदि दौ बबग्रा नोंनावगा हाबिमांखा
2: द हाइके नरं न बेबाग नन हामबाय दौ
1: द बबग्रा खुलुमका हाइके सिपाय
0: हुजुर तामो दागि जादि
1: नरं बेबाग न जायखे बायबायि लेला बायदि दौ आं थांगा
0: आव खुलुमका हुजुर निनि दागि तिनाव बेबाग नंबाय न
2: इसिरि ओ इसिरि
3: अ सक फायखा दाबुक न खाबिसिं बिसिं ताम सुग लेरि तंखा हिने वान सुग द्रपता बाहायसा निनि मुसै संना थांमानि खे काहाम तो अंनानि कक न
2: काहामनि बिसिंग काहामखौ गुंगै फालायमानि खालायखा आनि लांमाव' अमहाय मुसै कुफुं कतर मा ककयाखौ हिन्दे यासाकदि अमखाय किफिल फायसिं बलं लामानि बुफां फांसाव' थायनि सुसुरु बेदेक देख साव' ब्लाय ब्लाय साफानो गोरै खालाय थाय दंमानि नुगुय सिपानियाव दागिबै खागैथुमानि आमलायबो थाय
3: बा बा आमलायबो थायदे आसु कतर बा हिलिग माबो आखिनि न हिलिगब्लासा बे कसा ते थायसाखे नोंबा थायनो हिनब्लासा
2: दा सासिदि खांमानि खाय थायनि न खांमानि न आबसे खागैबायमाले सिपाय आसुमसा बुफांग' दंफ्रु न थायसा बाहाय बाहाय खायबो या केफ्लाय जागै हाव खालाय जाखाता हायसे हमाले सिनि आनि लगिनि मायुंसे आबुनो नुगै फाच्चा बुसुन्दैबाय खबसागै बुखुखौ दावै पाइखा हायखेबा थायसानो मा मा खालाय सिथानि बान्था
3: द आकन बबो के बया सिनि मायुं नब्ला मायुं बुरैबा बबो जों मनुष्य हायन बुरै रखाय मुखैनो हामजाग्नायबा नुगै तंगै मानजाग्लिया ना ता आंसे बनो नुगै तंगै सेमांगालाखा मुखै सिनामै जायसे मापागिरा नाय आचौग्रा दिख' निनि बागै ताम खायनाय सादिबो बाग्रा
2: आनि बागै ताबो मुंसा खायनो नांयाखौ नों सेनिनि आमलायबो थायन मोखै सिनामै जानाखै सायफागिरा दि
3: द आकन हायखे किसिसा आचौग्रा दिद' आंलेरिया दासि रग्न दागिउै काबुयै ताबुंन फायानो
2: द हायखे थांनि नों फायगिरा दि मोसै संना थांमानि कक तुमा गोबां मा थाना दंखौ
3: फाय दंग' आंबो खोनानानै नुमुजों दंग' आमलायबो थाय मुखै जाथैदै खोनाफायसियानो

0: थीपाई खाफ्रु आसमसाया केपलेजागै हाव कलाइजा थांकाता आमलाइबो थाय हाव कलाइजांमानि लगलगिन आं कासाय थांमानि मायं आबुन मानै फात जाखाय खसायचाय खिबिकाता हायनि बागैसे थायसा मामबु सिउनि गेदा हायाका थायनि नुसपाय खामुता
1: कुबुइन मिया चिनि माक्तु सा सामानि तुमाबो चिनि आमायंबो सागदेरियानो अंखा हिनला साबो बाग्रा
0: हाय जाहमै श्री
1: आव बुबाग्रा मिया फुंगो माक्तु सा आनो हाइनि न साबले माक्तु सा रग न साइमाना बुकक्ता मायंग रगनि तमुंग चामुंग रगबा
0: हायनि श्री हायकेबा चिनि मायंगवा आमलाय बथाय सामानि गलो न अमा कलाइखाता इसिरि आं अमो आमलाय बथाय मामबो मा कलाइलिया रांसाक बुदुल से मामबो मानि कलाइसु
1: ककखाय हायन कलाइसु बुबाग्रा आंखाय तो इमां फानो वानसुगि मानलिया महायखे अगो साचुआ नहिने तैसे नगनि मायंबो बुसा माननानि आबो बेलाय खायनो कक कुतुक दंमानि आबसे लाइते सा खाय अंगै थांखा मुतायरक नन बागमानि नकलायखा बुबाग्रा
0: अंखाय श्री निने आ कक्रक खिबिजांनाय कक गियानो ओ सालानो मोसै सिमिनो बागलिया बिनि लगिब अमबो बागमानि नकलायखाता अग साख्रि दंमानि ताबुक सानि मोखां नुसिनायखा आबुनि लगि मायंबो साब मानसिनाय आब किच्छानि कगलिया हाइले इस्री बुसखाय दं थका आंमति हिनै सावसे मानलियो खोनासनैनि बिसिंगन राजा खर' कायसा कतर माख्लाय दं थकनि पान्दा जुगालि जाखिना इस्री
1: आव बुबाग्रा आंबो अम बुसुखाय दं थका मतै हिनै सायसे मानलिया अंखा ओंखा बुबाग्रा आं ताबो हिंग्रा सेनो खुलुमखा बुबाग्रा
0: द द आकन
2: बा वान्डर वानले खेन्चन जुथन माउ मक लाइखिया अरबा अं यांग यांग हनमानिनो कं बाजार तिले कचां कचां हाइनो मारगन बले सुमिनि वा हनखाय महाय नंना नांगु
3: तामसा कि रांगिया सुमु जा सामनै नै
2: ए तिनि के सङै मानि चाखाता आ वाता सुमिन सनन नाय तमानि नों बुदो नां
3: आं बा सुमुइनो तामनि सेरंग्राया हाइफोना सनाम दे आन बान्ताबो कंसा सेरंगै नाया नों जलाङै सुमुइ तामनो रोङियाखाय जाया
2: ताबो कांनन सुमुइ सनामै रेमानि यागलोबो आंनो नन सुमुइ तामनाबो फन्ना नांजाउनाय त्या आता नोंखा ताबुक बियांनि थांगै फाइमाचा
3: थाङिया आयं दागिय सेखिसा थांगै फाइमानि आबसे कक थासे खोनाय फायै वाना सुख मानिनो खलाइसि वांखाय
2: ताम ककनो खोनाय नोंले आसोक वाना जाक थाखेबा सालासा आं खोनाय मानान बुलि आता
3: आबुदा ककसा नन सागै खोनारिना बागै न दाग दिखेमा फाइमानि ता
2: द सागर दिखाय खोनाय नायग्रा नाता
3: मिया राजा खर यंगन थिया थांगै राजानि बुसाजोग आबल सुवा पान्दाव मानजागै मा फाइखिया पुक
2: ओके
3: आ पान्दानि कंगनो खोनावै वाना सुख गांखाय फायं
2: द सादि तामा बमुति ककनो खोनावै आसो खैनो वाना जागै मा फाइखिया सानाखाय फ्लार फ्लार सावै फायदि ककनो साना नासा तालेरदि
3: राजानि बुसाजोग राजकुमारिनि आबुल सुमानि लगिब बंनि मायं बुसा कुफुनिब थानजाखाय आबुल सुइ फाइखिया पुक
2: तामो बंनि मायं बुसा कुफु
3: आ हो फायं राजानि बिहिक इसिबाय बाक्साखैन बंनि मायंजोंबो बावरि फु आबसे बुमानो सलिया मायंगुसा कुफुसे बावरि फु आबनि बागैन राजा तेबो हामजागै ते तंथकजाक सुगिन बसाजोबै बाक्साखैन आ मायंगुफु बसानबो थानजाखाय आबुल सुइ पाइखा फायं तेसे आसुखै आसुदाखै चारिखा हिन ता मन चानाय ता मन चाय अंनाय माथखा हिमले आबुनो न आंवा नबुइन न सायखनारिनानि हिनै मा फायमानि फायं आसुख नानि क
2: द राजानि बुसाजोग राजकुमारी तो आजायखा आबुल सुखा आबो तो सोनो दंगो फियाबा मायं बुसा कुफु आसय होनमाले अर किसा वासो जांनाय दंगु तन दंगु आता
3: आव फायं आंबो आबुनो बेलायखे वानासिउ नायथक हिनमाबो आबो मति हिनि सायसे मान्याफु हाइना बुमानि गाना गाना खेरा बायरिबै धुनिया दं हिन्ता
2: आबुनो जरा खायै सालसासो थाङै मा समा नायलायनो बोलि आता
3: आव फायं आबसे कक आबुनखै सालसा थाङै मा नमा नायलायनाय हाइन मायं तो नुखा फियाबो मायं कुफुले नुजाखौ
2: दंखा

0: आओ बुब गरा आं थांगा बुब गरा
1: ओ मा बुबाग्रा निले लांगमासे थाक्सि नायखा ओ मायोर
0: हाया कोइसिरि हायके ता काफुदि हायके ताबु कापमानि चाहिया बुसानि चाहिया अंगन ताकापि ताकापि बुखानो क्राक सखलागि थोहिमि नंग सरापसा लेरंगना सखाइग्रा दि फाजे इसिरि फाजे बासदि हिमि
1: बुबाग्रा साजो गरंती कुता मंगल लखना बले साजो गरंती नो तिनी न मान बुना बला बुबाग्रा ओ मुताई
0: मुंग संग्या
1: ओ मुताई
0: तावाना दिसरी नंग तावाना दी माननाय साजो गरंती नो जों तिनी न माननाय गोरा जने हाव खरियंग ना फाडी बाचरे बखास करा खगे फाडी बाचरे
1: दोआ कोन हिमदी या कर दी रमना नांगिया आंनो हिमै मानु ओ मा ओ रंजक ओ बुखा आं मता मखाय तोंनायखा ओ बुखा
0: इसिरी इसिरी ओंखो हाय दक तांखो बि मखनाया दे हिंदे सिरिं सिरिं थुया मोर खय तोंरा दि आं गताबो नंखनाय नों किच्छा पानो तावाना दे थो हिंदे इको सबा खानिन थुया मो नों सिरिं सिरिं काय रखय तोंरा दि मुं सातावाना दे आं खांग्राका
1: ओमा ओमुताय रग ओमता मुं मकलायखा इमंग दे मुक थांग दे आं जाबै मांग्रा लिया ओमुताय रग नों न सिचि नै ओमायो
2: असिक जरा पुला खाक्सा थुंगनुक मायंगु फुरखना रजाखा ताबु रजा मुंगो खरांग रेवानो तरुबाला देव बर्मा

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: 가방따국 대북국전 노력하나이동과 FM 우주는 또 살아서 팬도 가입해 101.6 메가하르자 노력 내 함정만 쓰니까 동마 판다. 할로
1: 할로
0: 아 람스고 클룸까
1: 국장 안젤라니 꺼니게 에 아 코나나 1981 니 보이 다르만 다르만 로에 헤어말린 보이 보이 님부몽 아스파스
0: 아스파스 니
1: तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी
0: ओके हां के
1: मांगा
0: आ सपना खनार नहीं
1: अब डरमन डर है मालिन बने हम दाना खरस तो सब से करेंगे बब को डन लके
0: डन के
1: तो स्पेशल भाबे बनता
0: आ दका बुखुक डन लखिनी बागी दे आ बुखुक कोनिका ओ रसा मंगनो डेडिकेट खलेका हाय के खना दे धर्मेंद्र तोय हेमा मालिनी भाई तके मसाजक आसपास हिंदी तके ने लाटा मंगेशकर तक किशोर कुमार भाई रे सब लगा सब

0: हेलो
1: हेलो
0: लामसको साबुङ काताको
1: देवर काम ताको
0: देवर का
1: रबिया
0: आ बाइना ने ताको रबिया आ साल कदुङमा नि जाकोलो
1: असले नेटको तावरमा जे अनि बेजल सँग मुइबल
0: सारे बुरु साबुङ खना नाइ
1: हिन्दी खनाइ मानो
0: खनाइ मानो
1: हिन्दी गए आगे ने बोलि करला उनको खानदान नि ये मुलाका ये त्यो बाहर नि मानो
0: ये मुलाकात एक बहाना है
1: अनेक चीनी जरा नहीं बलैता कारण आज खयपुर थे पैतृकमा हल नई फेमानी आप छाता
0: बु जरा रुक कग
1: नमना जीता तब
0: फिल्म तो
1: 79
0: ने टिकट के बुस हॉल टिकट
1: आप सेकंड क्लास गए 30 गए बेलकुनी गए 1.30 गए थर्ड क्लास गए खोखर खोखरता मजरा रो गए

आओ खाबंग ताकुक्ते बुकुंग नंगले आनी बागे सिमी ना आओ आनी बागे ना खाना तो खरंग पाना वो नीनी बागे सिमी आनी बागे सिमी ना फिर अब अकाउंट बुकुई नंग जेठनी खरंग खलाई ने आठ नंग आनो माने खरंग खलाई के जेठनी बु नंग आनो माने अकाउंट बुकुई खनादी और

0: और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।

0: सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय

0: आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।